0: लुकैया मारे विड़ने ऊने दुखी वाले मरे मेमोरी लॉस कीला
1: मेमोरी लॉस कौन द डॉक्टर यार सुनने दे
0: मम्मे किन्हीं के बुन्ने हैं या सीनी विड़ने मुकुट आते पर विड़ करने हैं या माता
2: माय गॉड
1: सुपर डॉक्टर ने डॉक्टर हरिया तो मुखिया दिए ना ले
3: हिना वेवी सिंधु हन्ने FM 93.5 හැන්දෑවෙ හතර වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening drive with Chamit and Charu.